0: Yenu.
1: Kanung Rose, my making.
2: ए मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिले मामु
0: यंगी रिमठिम दिंगी जो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्ट लाफा को के रसे की हुसनी है।

0: चाउचाउ
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202779
2: प्रणाम अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन की आवाज।

0: This is Radio Dhorbarahi, 103.8 megahertz.
1: Station 1. Studio Tanchit.
2: Aile, Diuso ko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301
4: Cameras standby. Reload music.
5: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइमचेक
2: अहिले दिउँसोको 4 बज्यो।
1: टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।